0: कार्यक्रम स्वास्थ्य सरोकार।
1: स्वास्थ्यका हरेक पक्षलाई समेटेर तयार गरिएको सचेतनामूलक कार्यक्रम स्वास्थ्य सरोकार।
0: एसजीसीएस नमूना सामुदायिक अस्पतालको प्रस्तुति रेडियो मर्स्याङ्गदी, रेडियो चौतारी र रेडियो भोटे उडारबाट एकैसाथ प्रसारण
1: प्रत्येक शुक्रबार बिहान 7:30 बजे।

0: बजे बजे चाकुती रेडियो ये बरी तो भाई मुझे जो रेडियो रे रेडियो मस्तंग दिले तमु केरी समाचार खाल खाई बो
1: हम दिने गम ये वो जुमले हम ये ठेलो से भिजो
0: बर्थाली बुदे सेवा ग्रही मरकरी नेपाली कांग्रेस सर्व केन्द्रीय सदस्य रे लमजुम द क्याले आरक्षण कोटर बाय केन्द्रीय सदस्य में उम्मीदवार की बरी क्लिउले जाना नेता मन
1: के मय रेडियो मस्तंग द क्याले दिनै नानर बाय 8 बजे खबे तमु के समाचार ये बरी आमलेत ओ

छा रेलो रेडियो मोरसिंग दी पंचानब्बे मेगा हज दे इंटरनेट अनलाइन रेडियो मोरसिंग दी डट ओ आर जे नाना आठ बजे खबर तम क्यों मोरसिंग दी फेती दी खुशी माए तमशोला तेबा मैश्वरी कर्व फेते।

बजेसम्म। दुई पुष्पलाल मध्य पहाड़ी लोकमाग को सुन्दर बजार भोलेटार सड़क खंड को बिमिरे भंजांग क्षेत्र में प्रत्येक दिन साझा 7 बजेदी बिहान 5 बजेसम इस यात्रु महानुभावर में पर्न जाने असुविधा प्रति क्षमा प्राथ।

फाइव एंड हाफ गर्लफ्रेंड्स के बाद ये रियलाइज किया कि ऊपर वाले ने एक ही तुम बनाया। पर तब तक तो मेरी यादों की नहीं, सबके सितारा बन चुके।

0: अरे ब्रो
1: क्या हुआ?
0: बहुत प्रॉब्लम हुई यार, मेरे पास पैसा भी नहीं है।
1: अरे ब्रो आई एम अर्निंग लॉट्स ऑफ मनी फ्रॉम अपस्टॉक्स।
0: बट व्हाट इज अपस्टॉक्स?
1: इट्स द हाईली रेटेड शेयर मार्केट ट्रेडिंग एंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। मार्केट ऊपर तो प्रॉफिट कमा और डाउन तो स्टॉक खरीद ले। इस ऐप में मिस्टर रतन टाटा ने भी इन्वेस्ट किया है और ये ऐप मेड इन इंडिया भी है। तू सिर्फ 550 रुपए में नॉर्मल डीमैट अकाउंट खोल सकते है, लेकिन आप तो तुझे फ्री में दे रहा है। और ये ऑनलाइन अकाउंट खोलना बहुत आसान है, तू नीचे दिए गए लिंक खोलकर रजिस्टर कर सकता है। तू बस नेम, ईमेल आईडी, पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ फिल करके मेरे रेफर कोड CHESS250 डाल दे। तुझे 5 रुपीज ब्रोकरेज कैशबैक मिलेगा और 10 रुपीज फ्लिपकार्ट वाउचर भी मिलेगा। ऑफर इज वैलिड फॉर नेक्स्ट 4 डेज। तो अभी रजिस्टर कर अपस्टॉक्स और आप लोग भी करिए।

गाइस अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा आपको 28,000 तक का फ्री सुविधा मिल सकता है, जैसे कि एडवाइजरी सर्विसेज, तबाका सर्विसेज और बहुत कुछ। दोस्तों यू विल गेट 250 फ्लिपकार्ट वाउचर आल्सो, ऑफर इज ऑनली फॉर माय व्यूअर्स। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अकाउंट अभी खोलिए।

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक एक बजे को छ।
2: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम टेक अहिले ठीक 4 बजेको छ.
1: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: तपाईं रेडियो मर्सेन्जी एफएम 95

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक छ बजेको छ.
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
2: मर्सिडीज़ FM 95 मेगाहर्ट्ज़.